0: ये है लाइका गोल्ड।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल at all protected.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
6: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
8: Bollywood ke legend kalakar. Sirf Leica Gold par.

जाने मन कोए। मन्ने सुत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से ती सन।

छिपते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहें उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए अखरी

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहण जाई।

आद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार। कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल।

ये है लाइका गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन

0: Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
1: Travel Hub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit travelhubworld.com.
2: 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 0734-520-666.
3: Cow's Choice Pure Ghee. Shudh Desi Swai.
4: Search is changing.
5: Customers aren't just using Google anymore.
4: They're asking AI.
5: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
4: One business, one recommendation.
5: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
4: Will your business be the answer?
5: Or the one that got left behind?
4: The future of search has already started.
5: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
4: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके. जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट. एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम. टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क.
8: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु,
10: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
8: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र
10: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर. टू बुक कॉल 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
14: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
0: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 टू.

0: Gold Breakfast with Kajal.
1: Minutes past seven is the time. Wakey, wakey, rise and shine. A very good morning. It is Kajal with you till 10 o'clock on UK's number one Asian retro music station, Laika Gold, Laika Radio Midlands, Laika Radio Birmingham. Starting off with two back-to-back tracks as always and super mega hits from the film Hum Aapke Hain Kaun, Chocolate Lime Juice, Ice Cream Toffee. Itni bhook lagi hai aur subah subah chocolate lime juice ke bare mein baat kar rahe hain. Kya yaar. और फिल्म कुर्बानी से आपने सुना कुर्बानी कुर्बानी किशोर कुमार अनवर और अजीज नाजन की आवाज़ों में ये गीत ऑन द ब्रेकफास्ट शो एज योर 7 o'clock स्टार्टर. क्या है स्टार्टर्स के लिए तो अभी आपने सुना, लेकिन अभी क्या हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एक अलग सा लाइक आई वांट से डायलॉग है, एक गीत मैं सुनाना चाह रही हूँ आपको. और बॉलीवुड फ्लैशबैक के लिए आपको यही बताना है मुझे कि ये कौन सा फिल्म से है, हू आर द एक्टर्स इन दिस फिल्म. आई एम नॉट गोना प्ले अ डायलॉग, आई एम गोना प्ले a song and you'll understand why. If I play a dialogue from this film, you'll have so many guesses. You'll get the actors correct, but you'll have so many guesses for their films, and it'll be like, nah, they're not this film, it's not that film, it's not this film, because they've done so many films together. So what I'm going to do right now is play you this. Aap bataiye hame film ka naam kya hai. Here we go.
0: Bollywood flashback with Kajal.

0: है
1: Like a Gold
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
0: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
0: Visit TravelHubWorld.com.
3: One performer, countless personalities, a whole universe of entertainment.
4: Sunil Grover, live UK tour 2026.
3: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: हमारी रक्षक है वो.
7: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
8: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
7: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन. द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
9: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग.

0: से निराला।
1: मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है।
6: इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार।
7: योर ब्रेन नाउ प्ले द गेम नाउ।
8: लाइक अ रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रागासा।

0: से निराला।
1: मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
3: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
4: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
5: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवरटाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
8: गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल।
9: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Harrow, the wait is over. Prakhyat Spice Village have Harrow ma khuli gayu che. Sizzling mixed grills, signature masala fish, swadisht karahiyo, ane tandoor ma thi nikrela garma garam fresh naan. Saathe sauthi mota vegetarian menus ma thi ek alag vegetarian kitchen ma tayyar. To family ane friends ne saathe lavo ane maano Spice Village no award winning swad. Avo 124 Dominion Parade, Station Road, Harrow. Spice Village Harrow, now open. Khawa, madwa ane celebrate karvanu tamaru navu sarnamu.
2: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
3: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
4: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
5: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
6: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
8: Leica Cool. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो LaikaGold.com पे.
9: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज. ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग टुडे. कॉल ऑन 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11, 11.
4: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties.
7: हमारी रक्षक है वो.
8: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
9: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
8: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन. द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
4: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Lyco Radio Network.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
1: 100% प्योर घी मेड यूजिंग अ ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक रेसिपी विद रिच अरोमा एंड ऑथेंटिक टेस्ट नो प्रिजर्वेटिव्स जस्ट प्योर गुडनेस कॉल 07344520666
2: हर चम्मच में शुद्ध देसी स्वाद
3: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 अक्टूबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइसलिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ बधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 07 double 9 double 8 2 3
4: नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
5: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner, Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24-hour line.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
7: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
9: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: होशियार।
1: गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड के कार्यक्रमों में मनोरंजन का पड़ाव। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून एंड वांट टू से थैंक्स टू काजल, शी विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। सोमवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 21 तारीख। वक्त कितनी तेजी से दौड़ रहा है, हमें पीछे छोड़ रहा है। कदम से कदम मिलाकर चलेंगे भाई वक्त के साथ। दिल में है एक बात, कहूं तो करार हो, चल और थोड़ा साथ अगर ऐतबार हो। मैं बस इसी ख्याल से मिलने गया उसे, शायद उसे भी आज मेरा इंतजार हो। मैं आ गया फरेब में एक रुत के दोस्त यूं, पतझड़ के बाद आई है शायद बहार हो। घर मान जाए तो ये समझना हुआ नहीं, दिल मानता नहीं है गर दिल में प्यार हो। दौलत का, मोहब्बत का, अकीदत का, हुस्न का, अच्छा नहीं है दोस्त किसी का खुमार हो। ये दिल मेरा है अब भी जब मुंतजिर तेरा, आ लौट के आ दिल, आ लौट के आ दिल पे अगर इख्तियार हो।
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
4: द साइकिल ऑफ लव From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
5: I left behind everything I knew.
4: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
5: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
4: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
6: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है
7: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
9: वेरी गुड मॉर्निंग भाई गीत सुनवाएंगे हम आपको जरूरी ये प्रायोजित गीत लेकिन उससे पहले मैंने महसूस किया है कि व्यक्ति का मशीनीकरण हो रहा है व्यक्ति का क्या हर काम का मशीनीकरण मतलब वी आर डिपेंडिंग टू मच ऑन मशीन्स हर काम मशीन से ले रहे हैं लोगों की नौकरियां जा रही हैं इस चक्कर में भाई पहले हम पे करने के लिए लाइन में लगते थे फिर जब टिल पे जा कर के और टिल पर खड़ी किसी खूबसूरत लड़की से दो चार बातें भी फोड़ लेते थे नहीं मेरा मतलब है कि हालचाल राजी खुशी भाई हाँ और जब वो मुस्कुरा के कहती अरे रवि शर्मा क्या बताएं साहब दिल में तड़का सा लगता था लेकिन अब कार्ड लेके जाओ जी पे बाय कार्ड और मशीन के सामने से गुजरो मत्था पच्ची करो सब कुछ आपको ही करना है तो उनकी तो तनख्वाह बच गई अपना एक्स्ट्रा समय लग गया और कोई बात करने वाला करने वाली मतलब आजकल साहब मशीनों से आप पहले ना चाय वाय जो है वो बनवा के पीते थे सामने वो आपके सामने बनाता था बनाते हुए बातें करता था और कप बाद में धोता था भाई कितने काम थे अब मशीन में कॉइन डालो चाय निकालो अब शिकायत भी नहीं कर सकते उसमें तो भाई चाय में चाहे मीठा कितना भी हो फिर भी शिकायत कर दो मीठा कम है भाई दूध कम है भाई थोड़ा और डालो इस तरह से ना मतलब बातें फोड़ने का अलग ही मज़ा होता था वैसे आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहते हैं भाई बचपन में चाय बेची स्टेशन पर बेची तो हमने भी थी लेकिन हमें तो किसी ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया अरे चपरासी बना दो प्रधानमंत्री का यार किसी मंत्री का नहीं चाय बेचना बेकार गया लेकिन अनुभव जो कमाया अरे वाह साहब स्टेशन पर चाय बेचने का अंदाज एक वो ठेली होती थी एक खम्बे के सहारे खड़ी थी और भाई थी तो वो देवराज की हम तो उसके लिए काम करते थे थोड़ी बहुत देर के लिए और रात को जब उसे नींद का झोंका आता और भाई वो सो जाता तो वो हमारे हवाले कर देता था उस रेहड़ी को हालांकि जब ट्रेन आती थी तो उसकी आँख खुल जाती थी और साहब जब ट्रेन आती थी तो रात को एक बजे दो बजे उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी वो आवाज़ लगाता था चाय बेचने के लिए लेकिन आवाज़ कैसे निकलती थी चाय लेकिन साहब सुबह जब वो नहा धो के तैयार होके आता था ना और रेडी अपनी लगाता था अगरबत्ती जलाता था और भाई भट्टी जो है तैयार होती थी उस वक्त ट्रेन आती तो उसकी आवाज़ में पता नहीं कहाँ से ताकत आ जाती फिर वो ऐसे बोलता था अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा देखिए साहब इतना चाय के आसपास रह के भी मैंने चाय की आदत नहीं डाली यकीन मानिए मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, हालांकि स्टाफ में लड़कियां कई बार बना के दी जाती, चाय दी जाती हैं, कॉफ़ी भी दे जाती हैं, भाई उनका मन रखने के लिए पीता ज़रूर, लेकिन एक दो घूट लेकर के फिर मैं छोड़ देता हूँ, उन्हें नहीं बताना वरना कहीं नाराज़ ना हो जाए। घर में भी पत्नी चाय बना के देती है, क्योंकि वो खुद पीती है तो मेरे लिए भी बनाती है। मैंने उन्हें कह दिया कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, फिर भी बनाती हैं। अब पत्नी के सामने अब इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते। तो उसके भी भाई दो तीन वो, मैंने कहा मैं आप ही की चाय में से एक दो घूंट ले लूँगा, लेकिन साहब ये चाय का इतना चर्चा इसलिए हो रहा है आज कि आज भारत में राष्ट्रीय चाय दिवस है, नेशनल टी डे। बताइए, ऐसे में तो भाई पीनी पड़ेगी ना, तो भिजवा दो, भिजवा दो स्टेशन वाली चाय। रेलवे स्टेशन वाली चाय।
10: अच्छा अच्छा अच्छा चाय।
9: पी लो, ले लो जी चाय पियो, लेकिन कप धो के जाने पड़ेंगे।

0: brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: तो साहब, आज भारत में है राष्ट्रीय चाय दिवस। लोग कहते हैं कि पहले चाय की इतनी आदत नहीं होती थी हिंदुस्तानियों को, और भाई अंग्रेजों को चाय का स्वाद पड़ा तो उन्होंने लोगों को पहले फ्री में चाय पिलाई ताकि उनको आदत पड़े। और ये आदत जब पड़ जाती है ना साहब, मैं बचा हुआ हूँ अभी, आप पिलाएंगे तो पी लूँगा, लेकिन नारी कही जाती है भाई किसी को, मैं किसी का दिल क्यों तोड़े, चाय से रिश्ते जोड़े, चाय पे बुलाया है, शायद मेरी मम्मी के दिल में ख्याल आया है। देखो चाय कितने काम कराती है, चाय पे लोग सौदेबाजी करते हैं, व्यापार चलाते हैं, चाय पे मीटिंग्स होती हैं, चाय पे रिश्ते जुड़ते हैं। लेकिन फिलहाल तो भाई हम खबरों के साथ जुड़ते हैं, समय हो गया है। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। जापान में एशियन गेम्स के बीच भीषण तूफान का अलर्ट, 300 उड़ानें फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बरसाए बम, तालिबान ने दावा किया है। ट्रंप से बात होने के बाद बोले यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बहुत कुछ बदल सकता है। 13 साल की एक चीनी लड़की ने एशियन गेम्स में बनाया नया रिकॉर्ड, तैराकी में जीता गोल्ड मेडल, 13 ईयर्स ओल्ड। और भाई भारत में राहुल गांधी ने कहा अर्पित का परिवार जानता है कि उस मासूम की क्या गलती थी। भाई ये एक केस है, देखते हैं समाचारों में कितना कुछ आज इसमें उजागर हुआ है। पहले ये खबर, रिवॉल्यूशनरी गार्ड की अमेरिका को वार्निंग, कहते हैं कि अगला हमला हुआ ना तो दुनिया देखेगी नए हथियार। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने वार्निंग दी है कि अमेरिका ईरान पर फिर से हमला करता है तो ऐसे नए नए हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जो दुनिया को हैरान कर देंगे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड की स्पोक्स पर्सन हुसैनी मोहबी ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान ऐसे वेपन्स इस्तेमाल करेगा जो दुनिया को हैरान कर देंगे। ईरान ने ऐसे हथियार बनाए हैं और उनकी ताकत बढ़ाई है जिनका इस्तेमाल जंग के मौजूदा दौर में नहीं किया गया है। उन्होंने इन हथियारों को ईरान के स्ट्रेटेजिक हथियार बताया जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जाएगा। हाँ भाई, देखना ये है, सोचना ये है, कोई धमकी है या कुछ इसके पीछे गहरी गहरी बात भाई मतलब छुपा है। अगली खबर, चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 23 सितंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे, ये वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है। विदेश मंत्रालय ने आज एक जारी सरकारी बयान में बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इनविटेशन पर जिनपिंग अमेरिका जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने जिनपिंग के दौरे को लेकर के सवाल किए थे। ट्रंप ने इनके जवाब में कहा कि हमारे बीच अच्छे रिश्ते हैं, वो अगले हफ्ते यहाँ होंगे और हमारी बहुत अच्छी बैठक होगी। जापान की राजधानी टोक्यो और आसपास के इलाकों में भीषण तूफान को लेकर के इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है। हमें अधिकारियों ने लोगों से भूस्खलन और बाढ़ के संभावित आशंकित खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। दरअसल ये ताकतवर तूफान डुजवान जापान के पूर्वी किनारे की तरफ बढ़ रहा है, पर इस साल जापान में आने वाला ये 25वां तूफान है। तूफान के असर को देखते हुए करीब 300 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और कई दूसरी ट्रेन सेवाओं को भी टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया गया है। रूस में पार्लियामेंट्री चुनाव के शुरुआती रुझानों में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के समर्थन वाली सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल की है। पता चला है कि पुतिन की पार्टी संसद में 2/3 सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखने की स्थिति में है। आज सुबह तक 90.43% मत पत्रों की गिनती पूरी हो चुकी है, यानी वोट गिने जा चुके हैं। यूनाइटेड रशिया को 57.86% वोट मिले हैं। भारत से आने वाली खबरों में, कांग्रेस सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM 4-5 सीटें जीत सकती है। उत्तर प्रदेश में भाई विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और अभी से पार्टियां जो है वो कमर कस रही हैं। कहा है कि सरकार बीजेपी की बनवा देती है, पार्टियां तो जीतती हैं वहां। दरअसल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संडे को कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई अकेले बीजेपी को नहीं रोक सकता, सारे इकट्ठे होंगे तो कुछ हो सकता है। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने बिहार में भी गैर बीजेपी दलों को पार्टियों को एक साथ आने की अपील की थी, लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी नहीं और राज्य में बीजेपी ने गठबंधन वाली सरकार बना दी। अफगानिस्तान के तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया है कि संडे की रात को पाकिस्तानी फौज ने कुनार और पक्तिका प्रांतों में आम लोगों के इलाकों पर बमबारी की है। तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की जानकारी देते हुए कहा कि उचित जवाब दिया जाएगा, इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीती रात पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका राज्यों में आम लोगों के इलाकों पर बमबारी की है। 2 पुरुष मारे गए, 1 महिला भी बताती हैं इनका शिकार हुई, जबकि 2 महिला और 2 पुरुष जख्मी भी हुए हैं, ये सभी लोकल नागरिक हैं। और पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि ऐसा हुआ तो 1 लीटर तेल 1,000 रुपए में भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। कैसा रहा यमन के हूती विद्रोहियों की बढ़ती एक्टिविटीज और सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हमलों से पाकिस्तान के लिए तेल इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी बीच पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा कि तेल की कमी होने की हालत में इसकी कीमत

0: के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और वो न्यूयॉर्क में मिलने पर सहमत हो गए हैं। जेलेंस्की ने संडे रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ट्रंप से होने वाली बैठक बहुत कुछ बदल सकती है, काफी कुछ चेंज हो सकता है। और भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट संघ का स्टूडेंट यूनियन के नतीजों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार देर रात रिएक्ट किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने डीयू स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव घपले से जीता है। आपको बता दें भाई, ये जहां एक तरफ राहुल गांधी स्टूडेंट्स और नौजवानों की भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं और वहां पर भाई कुछ कॉमेडियन भी मंच पर जो है कॉमेडी करते हुए मिमिक्री करते हुए नजर आए हैं, वहीं जो इलेक्शन हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्टूडेंट पार्टी यानी स्टूडेंट दल है उसका नाम है। उसका आई थिंक दो पार्टियां, कांग्रेस की तो NSUI है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, उसकी हार हुई है। और जो BJP की समर्थित पार्टी है वो है अखिल भारतीय छात्र संघ या स्टूडेंट यूनियन, ABVP कहते हैं उन्हें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो उसकी जीत हुई है। और भाई, आखिर में यह खबर कि सीरिया के उत्तरी इलाके में अलेपो प्रांत के अल-एस शहर में आज सुबह कई धमाके हुए हैं। बताया गया है कि धमाके सीरियाई डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े एक हथियार डिपो में हुए और घटना के बाद इलाके में स्थिति को लेकर के जानकारी जुटाई जा रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: लौटिए संगीत की ओर।

0: ये अगर आपको दुबई इस तरह से घुमाएं भाई, सैर कराएं कि याद करेंगे, हमारा नंबर है 0208-574-8410. रिमेंबर, साउथ ऑल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: हॉलिडे ब्रेक्स वर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रेवल. लो प्राइसेस फॉर फ्लाइट्स, होटल्स और हॉलिडे पैकेजेस. विजिट southalltravel.co.uk.
2: इफ वी कीप यूजिंग वाटर लाइक वी डू नाउ, बाय 2055 वी कुड बी शॉर्ट बाय 5 बिलियन लीटर्स अ डे.
3: येप. So we need everyone to use 28 litres less water every single day.
4: How? Well, if everyone spent 2 minutes less in the shower, that'd do it.
3: But we're not just talking households. We're talking the water industry and businesses too. Everyone has to do their bit.
2: Because when we work together,
5: it all adds up.
6: Come on, you lot. Search Let's Save Water.
7: Yeah. Like our gold.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
8: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
8: विजिट travelhubworld.com. Oh,

0: Atco food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: Pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: Hamari rakshak hai wo.
9: Balaji Telefilms presents The Van, Force of the Forest.
10: Mujhe ye jo ajeeb si cheeze dikhai de rahi hai un sab ka matlab kya hai? Kaun kar raha hai ye?
9: Mystery, fantasy, action. The Van, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in cinemas Friday 25th September. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.
11: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays scenic Swiss tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
12: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
13: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
14: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler. Get ready for winter.
15: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
17: और लीजिए साहब अगला गीत सुनवाते हैं आपको, इसमें थोड़ा नशा है कुछ थोड़ा मजा भी है। हमारे स्टाफ में कई हैं, वो चाय का चर्चा अभी तक चल रहा है। वो हमारी कौन है ये अपनी नैना शाह कहती हैं हम भी चाय के तोड़े हुए हैं मरोड़े हुए हैं क्या बताएं साहब। कहती हैं इंडिया में सड़क पर वो जो चाय बेचने वाला था उसके यहाँ वहाँ खड़े होकर के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता था। हाँ भाई हमारे यहाँ जो कॉलेज में कैंटीन थी ना वहाँ बड़ी परेशानी थी। वो चाय वाला हमारा दैया साहब था, वो कहता था मैं तो शर्मा जी अपना ये खोखा बंद करूँगा। मैंने कहा क्यों भाई? कहता है ये स्टूडेंट्स आते हैं ना 30 पैसे में, 30 पैसे की चाय आती थी, 30 पैसे में मुझे अपनी बीवी बना लेते हैं, इतना काम लेते हैं। कहते पंखा चला, अरे दया साहब ये टेबल पे कपड़ा मारो भाई, अखबार मंगवा के दे भाई अखबार साहब, चाय बना दे 2/3। 2/3 का मतलब है 2 के पैसे देंगे, 3 कप बन जाए 3 आदमी पियेंगे, ऐसी बना देना। और साहब उसके बाद कहते हैं चाय पीने के बाद कहते हैं तो भाई पैसे लिख देना। क्यों क्यों भाई? हाँ चाय तो पी लेकिन मज़ा नहीं आया।

0: मजा आया? नहीं नहीं, हाँ पंजाबी में मजा आता, हरियाणवी में मजा आता, लेकिन गुजराती में मजा आती है, बहुत मजा आती है। रवि भाई आपके हाथ से चाय पी के बहुत मजा आती है। और हमारी अनीसा नासिर भी चाय की तोड़ी है, वो गाती है मैनू चाना मिले तमर जामा।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates. LemFi ke bhai 1 pound ke badle they are giving in Indian currency 128.23 rupees. Pakistani 370.67. Sri Lankan rupee 442.51. Bangladeshi takke 164.16. And Afghani 86.94.
1: Laika Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of 104.43 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
6: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11, 11.
7: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
9: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
10: माया भाई नी मौजवाण मा थई जाओ रेडी। माँ कृपा फाउंडेशन्स यूके प्रेजेंट्स भव्य डायरो। माया भाई आहिर, जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे 26 सितंबर 2026 ना रोज।
11: वेन्यू, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 3, 10 स्टोन फील्ड वे, साउथ राइस लीप, HA40JS।
10: टिकट्स 30, 40 अने 50 pounds, लाइट रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड।
11: बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772-287-509।

0: सारा जिंदगी वहाँ सैटल माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
1: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
1: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाइए और सुनिए थॉट फॉर द डे, आज का विचार। हम इसे कहते हैं चिंतन। आज के चिंतन में शामिल करने के लिए आलेख हमें सटन से प्रशांत ने भेजा है। प्रशांत कहते हैं, आपका रेडियो सुनकर बहुत अच्छा लगा और आपका चिंतन हम पसंद करते हैं। आज एक खास दिन है, उस अवसर पर आप इसे चिंतन में शामिल कीजिए। तो प्रशांत जी और सुदीप्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपके नए घर में प्रवेश करने के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। और भाई, आज का चिंतन वो याद दिला रहे हैं कि आज एक त्यौहार है, और वो ऐसा त्यौहार नहीं भाई ईद, बैसाखी, दिवाली जैसा किसी धर्म से इसका संबंध नहीं, किसी व्यक्ति विशेष वर्ग से इसका संबंध नहीं, सबका त्यौहार है। और त्यौहार का नाम है इंटरनेशनल डे फॉर द पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। सुना है आपने कभी? भाई ये त्यौहार सबके लिए है, सबका है, साझा। लेकिन इसका इनिशिएटिव जापान ने लिया। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशंस का जापानीज ये इनिशिएटिव है। और आजकल आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा घंटा, जो घंटी होती है ना, जैसे वो बेल, एक शांति की घंटी, बेल ऑफ पीस, यूएनओ में स्थापित की गई है, कई सालों से है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की सबसे सुंदर और सिंबॉलिक ट्रेडिशंस में ये एक है। और फिर नोट कर लीजिए बहनों भाइयों, आज 21 सितंबर का जो दिन है, इसके संदर्भ में ये इंटरनेशनल डे फॉर द पीस वहां मनाया जा रहा है। कैसे? आज ही के दिन भाई यूनाइटेड नेशंस में वो जो घंटा है बहुत बड़ा, यानी बेल ऑफ पीस है, वो उसको बजाया जाता है साल में एक बार 21 सितंबर को, बिकॉज इट इज अ पीस बेल, इट इज द यूनाइटेड नेशंस डे फॉर द पीस। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ऑफ जापान ने 8 जून 1954 को यूनाइटेड नेशंस को एक ये घंटा, ये बेल जो है, ये भेंट की थी। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह घंटी सिर्फ जापान की नहीं है, इसे बनाने के लिए 60 से ज्यादा देशों के लोगों के से सिक्के और धातु के टुकड़े इकट्ठे किए गए। मोर देन 60 कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट द मेटल पीसेस टू मेक दिस बेल। और यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इसमें कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आम लोगों और बच्चों का कॉन्ट्रीब्यूशन भी था। इन सारे मेटल्स को, इन सारी धातुओं को पिघलाकर ये घंटी, ये घंटा का हो बनाया गया। और इसलिए जब ये घंटा बजता है तो उसकी आवाज में मानो दुनिया के अनेक देशों की सामूहिक शांति, सांझी शांति की इच्छा सुनाई पड़ती है, अमन चैन की एक तमन्ना मानो पुकार रही हो। और इस भाई घंटे के ऊपर जापानी अक्षरों में एक संदेश भी लिखा है जिसका मतलब है लॉन्ग लिव वर्ल्ड पीस, दीर्घायु हो, पूर्ण विश्व शांति, कंप्लीट पीस इन द वर्ल्ड। अब जिस लकड़ी के ढांचे में इसको रखा गया है वो एक ट्रेडिशनल जापानी टेंपल जैसा है, और जापानी साइप्रस की लकड़ी से यह बनाया गया है। और सबसे इमोशनल बात यह है कि 21 सितंबर का दिन जो आज है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस घोषित किया गया है, और इसी मौके पर, यानी आज ही के दिन, वहां ये घंटी बजाई जाती है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल और असेंबली के अध्यक्ष भी इस समारोह में घंटी बजाते हैं। ये सेरेमनी परफॉर्म की जाती है जिसमें महासचिव
एंटोनियो गुटरेस और 81वें महासभा अध्यक्ष खलीलुर रहमान ने घंटी बजाई थी। ये फॉर्मर भाई लीडर रहे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सोचिए एक घंटी जिसमें 60 कंट्रीज के लोगों के सिक्के पिघलकर एक हो गए, जुड़ गए। अब आप उसमें पहचान नहीं सकते कि मेटल का कौन सा हिस्सा कौन से देश का था। और ये घंटी आवाज करती है तो मानो सब मिलकर के बोल रहे हैं। देश भले ही अलग अलग भाषाएं बोलें, लोग अलग अलग धर्मों का पालन करें, संस्कृतियां फॉलो करें, लेकिन ये घंटी बनाने के लिए जब धातुएं पिघली तो इनकी अपनी अलग पहचान नहीं रही, एक हो गई। और जब घंटी बजती है तो उसका पैगाम होता है कि हम अलग हो सकते हैं लेकिन शांति की हमारी इच्छा, हमारी चाहत एक ही है, पीस। शायद यूनाइटेड नेशंस की पीस बेल का ये सबसे बड़ा पैगाम है। पर जरा सोचिए बहनों भाइयों, जिस जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो भयानक दुर्घटना झेली, उसी जापान की ओर से यूनाइटेड नेशंस को शांति की ये घंटी मिली। ये इतिहास और मानवीय आशा दोनों को एक साथ जोड़ती है। भाई देशों में जंग तो आज भी चल रही हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो रशिया और यूक्रेन के बीच हो, और भी कई देशों में छुटपुट संघर्ष जारी हैं। और भाई ये संघर्ष किस चीज को लेकर के, जमीन के टुकड़ों को लेकर, भाषाओं को लेकर, धर्म को लेकर के भी झगड़े होते हैं साहब। धर्म कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन वो वाला नहीं है जिसे तुम मानते हो। ईश्वर एक है पर उसका वो नाम नहीं हो सकता जिसे तुम फॉलो करते हो। जो हम मानते हैं वही ईश्वर है। और जब किसी का धर्म पूछकर उसकी हत्या की जाती है तो कैसे शांति स्थापित हो पाएगी। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर ये मान ले ईश्वर एक है, तो भले ही चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारे, वो वही है जो तुम्हारा है, वो वही है जो हमारा है। उसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसका बंटवारा नहीं हो सकता। मत पूछो किसी से कि वो हिंदू है या मुसलमान है, बस इतना समझ लो कि वो इंसान है।

0: जगजीत सिंह की आवाज में ये गंभीर चिंतनीय संदेश आपने सुना, और उससे पहले भाई हमने जो आलेख आज प्रोग्राम में शामिल किया, इंटरनेशनल डे फॉर द पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर प्रशांत जी ने सटन से भिजवाया हमें आज का चिंतन, आज का आलेख, उनकी पत्नी सुदीप्ता जी भी, उनका भी कंट्रीब्यूशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद नए घर में प्रवेश के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो, दोस्ती बस है मेरा पैगाम, मुझे जीने दो, जीने दो। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर ये चिंतन हमने प्रस्तुत किया, और भाई इसका रिस्पॉन्स देखिए, बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे हैं। रवि जी सुपर्ब लिख रही हैं, शोभना राय, जगदीश जी बुशी से एक्सीलेंट चिंतन वो कहती हैं, कीर्ति कहती हैं मे देयर बी पीस ऑन द अर्थ, शांति चैन अमन भाईचारा मेल मिलाप यही तो चाहिए जीने के लिए। थैंक यू जगदीश जी बुशी में, और फतेह पटेल वुल्वरहैम्पटन में, रवि भैया बहुत खूबसूरत चिंतन, थैंक यू भाई। नीला चौधरी जी हमारी रेगुलर लिसनर, जय श्री कृष्ण कहती वेरी ट्रू चिंतन एंड वेरी नाइस। विजय मॉरिशस वाले कहते आपका प्रतीक्षण जिंदगी का मंगलमय हो, ये हम दुआ करते हैं। अनुषा राजानी थैंक यू वेरी मच, आप चाय पर टिप्पणी कर रही हैं, आगे जब आज लगता है तो चाय कोई ना कोई पिला ही देगा शर्मा जी को, थैंक यू। एक जमाना था जब मैं भाई वर्ल्ड सर्विस में बीबीसी की वहाँ काम करता था, तो वहाँ चाय पता है कितने की मिलती थी, यकीन नहीं करेंगे आप, वहाँ 6 पैनी की चाय मिलती थी, सब्सिडाइज था, कैंटीन में बहुत कुछ हम वहीं खाते पीते थे, तो 6 पैनी की चाय, हमारा आपस में वहाँ झगड़ा होता था कि आज मैं पिलाऊँगा आज मैं पिलाऊँगा। तुमने कल पिलाई थी आज मेरी बारी है भाई, ऐसी चाय मिले तो। लेकिन फिर भी शर्मा जी को चाय बिल्कुल नहीं प्यारी है, हाँ वो क्या कहते हैं सामाजिक रिश्ते निभाने के लिए कई बार पीनी पड़ जाती है थोड़ी बहुत। वियना में अनिल जी सुन रहे हैं हमें, थैंक यू वेरी मच। फारूक मोहम्मद भाई ईस्ट लंदन में हमारे साथ जुड़े हैं, कहाँ चले गए थे फारूक भाई, बहुत दिनों बाद हाजिरी लगवाइए। अनिल सोनी जी थैंक यू, और भरत गंगाराम जी, हंसा वोरा जी, हेतल सोलंकी और कल्पना जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिएगा आज का चिंतन, आज का विचार, ये बताते हुए कि भाई चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK reminding that if you want to send money to India, it's an attractive rate. They are giving 127.8 इंडियन रुपीज फॉर वन पाउंड, 127.80 रुपए। आज का रेट यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। दिस इज लाइक अ गोल्ड। This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: कंटेनर्स
1: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
2: Harrow, famous spice village, is now open in Harrow. Sizzling mixed grills, signature masala fish, rich, delicious karais, and fresh naan straight from the tandoor. And with one of the biggest vegetarian menus prepared in a separate vegetarian kitchen. So bring your family, bring your friends, and taste the award-winning flavor of Spice Village. Find us at 1-4 Dominion Parade, Station Road, Harrow. Spice Village Harrow, now open. Your new place to eat, meet, and celebrate. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु,
5: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
3: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
6: शीघ्र शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
7: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Book online at Eventbrite.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
10: 0730098823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730098823।
11: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
13: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
14: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
15: Travel Hub.
14: At all protected.
13: Leica.
16: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: प्यार का सलाम सिर्फ आपके नाम नहीं है, बंदे ने फोटो कॉपी करा के 40 लोगों को भेजी है। और एक संदेश आया है भाई, ये आप सबके नाम डेफिनेटली आया है। संदेश है, दिस इज अ कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1%, होस्टेड बाय अनिल कपूर। एवरी वीकेंड पे होता है ये, शाम 8 बजे, एंड वेयर ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉट स्टार। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉट स्टार ऐप नाउ। जियो हॉट स्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
1: ये है लाइका गोल्ड, फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कन्यादान था फिल्म का नाम, जिसका गीत लता जी की आवाज में आपने सुना।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Extra podcast update.
0: लाइका एक्स्ट्रा नवाई, जो उस पर हमारा नया एपिसोड आ गया है, एपिसोड नंबर 34, विच इज कॉल्ड मॉडर्न हैरेसमेंट। भाई बड़े तरीके ये हैरेसमेंट के ना जो हैस किए जाते हैं, होस्टेड बाय दीप राजा, और इसके बारे में जानकारी के लिए कैसे उनसे बचा जाए, कैसे उनका मुकाबला किया जाए, दीप राजा स्पीक्स टू संगीता पांडे ऑफ IIW, इंडियन इंस्पायरिंग वुमन भाई, और गायत्री शेनॉय, इनसे बात की उन्होंने, प्रिंसिपल बिजनेस एनालिस्ट, अबाउट मॉडर्न हैरेसमेंट। तो ये भाई जरूर देखिएगा एपिसोड, अवर लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन एंड एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service. Service with unbeatable price.
5: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
6: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिटेड, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
7: Cow's choice, 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 07344520666.
8: Cow's choice, pure ghee, shuddh desi swai.
9: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
10: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
11: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
12: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
13: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
14: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
13: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
14: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
13: Cashback Remortgages. Your mortgage should work.

0: For you. Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee. Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler. Get ready for winter.
1: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
2: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
3: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the Weekend Breakfast Show from 7am Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
5: Very good morning. भाई ये चाय पीछा नहीं छोड़ रही है, चाय पीने वाले आ गए. कई बार क्या होता है कि आप अपने लिए चाय बनाते हैं, अचानक गेस्ट आ जाता है तो आप घोड़ा मोली करते हैं. घोड़ा मोली क्या होता है, उसी में दो थोड़ा यार थोड़ा पानी और डालो. और कई बार तो मैंने बताया ना, यूनिवर्सिटी में हमारा वो खोखे वाला दैया साहब, वो उसको तो यही कहते थे 2/3 बढ़ा दे. फिर एक दोस्त और आ गया, कहता भाई 2/4 कर दे. बताओ ऐसे से यार, दो और आ गए तो भाई वो जो चाय बनवा रहा था ना कस्टमर, ओरिजिनल कस्टमर कहता है यार तू ऐसा कर, तू रह नहीं दे, हम नहीं पीते चाय. भाई अपने हिस्से में आनी कहाँ है. चाय ऐसी चीज़ है भाई, क्या बताएं. बस मैं तो कहता हूँ गेस्ट आए ना तो आप उसको चाय पिलाओ, वो कौन सी, वो ग्रीन टी. ग्रीन टी उसमें ना मीठा हो ना दूध हो, कुछ भी ना हो. उसके कई फायदे हैं. एक तो बंदे सोचते हैं भाई बड़े ये पढ़े लिखे कोई ऐसे वर्ग के लोग हैं जो ऐसी चाय पीते हैं, सेहत के लिए जागरूक. दूसरी बात खर्चा कम. तीसरी बात बंदा जो एक बार पिएगा ना मुड़ के नहीं आएगा, बता दें. थैंक यू हमारे जो बैसन साहब हैं उन्होंने भेजा ये आइडिया कि रवि जी आप आओगे ना तो आपको ऐसी ही चाय पिलाएंगे. थैंक यू जी. चिंतन के प्रशंसक बहुत संदेश भेज रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. लो जी चाय हाजिर आपके लिए, थोड़ी नशीली है.

राजेंद्र राज जी, थैंक यू वेरी मच। राजकुमार कहते हैं, सोमवार की प्यार भरी राम राम, सोमवार की नहीं, राजकुमार की प्यार भरी राम राम।

0: at the Golgappiyan da Pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: ये गीत हमें लेकर चलेगा समाचारों की ओर और ये फरमाइश हमें लेकर के चलेगी प्रसाद की ओर। कहते हैं हमारे यहाँ आओ चाय पिलाएंगे आपको, पर हमारे नाम गाना लगाओ। ये चाय का लालच हमें नहीं चलता। प्लेसी प्रसाद में तैसी मीनाक्षी, एक ऐसी भी होना चाहिए ना तैसी के साथ, ऐसी और तैसी। छेताली और कस्तूरी मासी और प्रिया मारिया एनी शंभा, क्या है ये क्या लिखा पता नहीं, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ लेकिन एस एच ए शंभाली समथिंग समथिंग। ओके पैसे काट लेना इसकी, सही नाम नहीं बोला तुम। दीक्षा हाँ आपके नाम भी थैंक यू। और भाई राजेश भाई एंड हिज फुल टीम, सबके नाम ये गीत मस्ती भरा।

स्वर्गीय मुकेश और साथियों की आवाज़ों में ये गीत हमें पहुंचाएगा खबरों तक। और भाई खबरों में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो सेक्सुअल हरेसमेंट और रेप जैसे अपराधों के लिए स्पेशल व्यवस्था कर रहे हैं, कोर्ट में न्याय मिलेगा, हर क्राउन कोर्ट में एक कमरा अलग से ऐसे केसेस से निपटने के लिए निश्चित किया जाएगा। समाचारों की ओर ये गीत हमें ले चला है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।

0: हम तो तेरे आशिक हैं, जबरदस्ती के आशिक हैं, चाहे तो माने या ना माने। भाई बहुत सारी नहीं मानती हैं फिर भी आशिक तो हैं, क्या कर सकते हैं, आशिक है, अपने घर में है, तुम्हें क्या कहते हैं, सोचते हैं क्या चाहते हैं, ठेका थोड़ा दिया सबको बताने का। बैक टू बैक संगीत भाई कार्यक्रम के अंतिम दौर में स्वागत है आपका। ये तीसरा घंटा यानी फाइनल आर है मनोरंजन प्रोग्राम का। माय नेम इज रवि शर्मा और बहन भाइयों मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद एक बजे तक हाजिर हूँ, ऐसे ऐसे चटपटे, कुछ अटपटे और कुछ मीठे और कुछ गंभीर गीत लेकर के।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK offering 127.8 rupees for £1 and that's the maximum bhai 127 rupees 80 paise aaj ka rate hai aap bhijwa sakte hain via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app terms and conditions apply
1: State Bank of India UK offers savings products business banking buy to let mortgages and safe deposit lockers visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch T's and C's apply
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
3: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
5: Cow's Choice Pure Ghee. Har chamach mein. Shuddh Desi Swai.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइसलिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगो मां जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-2287509
9: हमारी रक्षक है वो
10: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
11: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है कौन कर रहा है
10: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
12: फ्रॉम साउथॉल ब्रॉडवे टू द लंदन ट्यूब यूके द बिग बैंग ऑफ एंटरटेनमेंट हैज अराइव्ड बिग मूवीज चेक बिगेस्ट ऑफ स्टार्स Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat. Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
13: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
14: Oh, look at that bump. You're glowing.
15: Oh, thanks.
14: Have you had your whooping cough and RSV vaccines yet?
15: Oh, no, not yet.
14: Definitely get both. My niece caught RSV after she was born. It was awful.
16: RSV and whooping cough can cause serious illness in young babies. Being vaccinated during pregnancy passes on immunity and helps protect your baby in their first months of life. Speak to your midwife or GP practice. Stay strong. Get vaccinated. Search nhs.uk/pregnancy-vaccinations.
17: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
18: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
19: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और लीजिए साहब बता दें आपको कि इस सप्ताह हु इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक. सोचिए जरा वो जिनके बारे में खूब चर्चा है भाई और उनको लाइव सुनने का थोड़ा खर्चा है लेकिन वो आ रही हैं अपना शो लेकर के. वन एंड ओनली मिसेस सुब्रमण्यम. ये कौन है मिसेस सुब्रमण्यम? ओरिजिनल नाम कविता कृष्णमूर्ति. इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक. अरे साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ जब वो यहाँ आई थी स्टेज शो करने, लाइव देखा था, करीब से उन्हें सुना था, उस वक्त बहुत खूबसूरत सांवली सी लड़की और आवाज़ वही तो पहचान है. नहीं दिल्ली वाली नहीं है. दिल को जलाए, आग लगाए, चेन्नई वाली.

0: कविता कृष्णमूर्ति, वेरी वर्सेटाइल सिंगर भाई। आशा जी के बाद अगर कोई उनकी जगह भरने की कोशिश कर सकता है तो जिसमें वैरायटी ऑफ भाई मूड्स जो वो अपनी आवाज़ में शामिल कर सकती हैं वो कविता जी हैं। और कविता जी, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनके पतिदेव बहुत जाने माने वायलिन वादक हैं और इस सप्ताह वो हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

आपको बता दें पहले सोने की तवीथड़ी क्या होता है, गले में पहनने वाली वो तवीथड़ी होती है, पंजाबी वाले समझ जाते हैं, और भाई जो नहीं समझते मत लेना, जो समझ गए हमें बनवा लेना हस्बैंड से जिद करके कि सोने दी तवीथड़ी चाहिए मैंने कहा दे वास्ते है लो सोने दी तवीथड़ी जे मैं होंदी सोने दी तवीथड़ी तेरे गल च पै तेरे गल पै जांदी रहिंदी गल नाल लग के तेरे

0: व्हाट अ वॉइस शी वाज ब्लेस्ड विद भाई, नूरजहां, मलका तरन्नम। नूरजहां की आवाज में आप ये गीत सुना रहे भाई, इसलिए सुनवाया कि आज वो दुनिया में होती तो अपना जन्मदिन मना रही होती। यस, 21 सितंबर 1926 में जन्मी थी और 2000 में उनका इंतकाल भी हो गया, लेकिन अपने जीवन काल में बहुत सारे मीठे मीठे गीत वो देकर गई। ये गीत खासकर भाई इसलिए पसंद है, मैं इसको बहुत बार सुन चुका हूँ और एक बार लाइव सुना, लाइव नहीं, नहीं नूरजहां की आवाज़ में नहीं, आप अपनी नूरजहां हमारे रेडियो में है, एक नूरजहां अनीसा नासिर उनका भी ये फेवरेट सॉन्ग है, वो गाती हैं भाई, आज नूरजहां दुनिया में होती तो अपना जन्मदिन मना रही होती। और किसका जन्मदिन है, बाली भाई तो जिक्र करेंगे, हम भी बताएंगे, हमारे एक दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye hai Laika Gold.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

एक विलेन है। अब विलेन्स में आमतौर पर गाने नहीं पिक्चराइज होते, वो तो भाई लड़ाई झगड़े छेड़खानियाँ, बस लड़की के साथ किसी विलेन को अपने गाना गाते देखा हो प्यार मोहब्बत में डूब करके, नहीं वो तो लड़की को उठाने वाले होते फिल्म में। गुलशन ग्रोवर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गुलशन। कुछ फिल्मों में इतने दमदार रोल हैं गुलशन ग्रोवर के कि आपको लगेगा कि भाई सबसे पावरफुल विलेन दिखाई पड़ते हैं।

सोनू निगम की आवाज और गुलशन ग्रोवर पर पिक्चराइज्ड ये गीत। मेरी जो लास्ट मीटिंग गुलशन ग्रोवर के साथ हुई थी वो मेरे अपने शहर में रोहतक में। मैं घर से विदाई लेकर के एयरपोर्ट की ओर जा रहा था, फ्लाइट पकड़नी थी, तभी फोन बजा और गुलशन कहता मुझे पता लगा है कि आप रोहतक में आए हुए हैं, सीधे फिल्म सिटी चले आओ, ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहा हूँ आपकी। मैंने कहा फ्लाइट है? कहता फ्लाइट रुकवा देंगे, आप जानते हैं विलेन कुछ भी कर सकता है। समय था फ्लाइट में भाई, बड़ा अच्छा लगा। आपने मेरे शहर में फिल्म सिटी है, अब शूटिंग चलती रहती है वहाँ फिल्मों की। उस दिन गुलशन से मुलाकात करके ब्रेकफास्ट किया साथ में। गुलशन आज आपका बर्थडे भाई, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।

0: breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और Southall Travel का संदेश नोट कीजिए. They are saying that Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. जाने माने मशहूर है भाई दुबई के लिए. तो कॉन्टैक्ट Southall Travel टुडे ऑन 0208574 8410. Southall Travel इज एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है
3: Like a Gold
1: TravelHubWorld.com. कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके. जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC Northolt. एक शाम सोलफुल म्यूजिक डिवोशन और एनर्जी के नाम. टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
2: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
3: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो तो वो माँ का ही रास्ता अपनाती. इसे हमेशा याद रखना.
3: काश कोई आ जाए.
1: Catch the brand new show Sayoni starts Wednesday the 23rd of September at 6 p.m. on Star Plus and watch anytime on Jio Hotstar.
4: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
5: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.
6: Lot aiye, dholak ki thaap ki taraf. Sangeet ki aur. सुरों की ओर, मस्ती की ओर, सुनाइए सबको, कान खोल के सुन लीजिए सब लोग. लता जी की मधुर आवाज कानों के रास्ते दिल में उतर जाएगी और हमेशा के लिए जम जाएगी, वहीं ठहर जाएगी.

0: भाई आपके घर परिवार में भी किसी का जन्मदिन है तो नाच गाना हो, वही मस्ती हो। वैसे पॉलिटिशियंस में बताऊं, आपने नाम सुना हो शायद सतपाल महाराज, ये मेरा ख्याल उत्तराखंड से आते हैं, महात्मा सतपाल महाराज 1951 में जन्मे थे कनखल में हरिद्वार के पास, और भाई वो राजनीति में काफ़ी सफल रहे हैं। हालांकि उनके भाई का तो बहुत नाम हुआ था इसमें अध्यात्म में, पर आज ही महाराजा हरि सिंह का भी जन्म हुआ था 1895 में, कश्मीर के राजा थे। और इसके अलावा भाई नूरजहाँ, गुलशन ग्रोवर, इनका भी जन्मदिन आज ही पड़ता है। पर आपके घर परिवार में अगर कोई आज अपना जन्मदिन मना रहा है तो हमारी ओर से ये पैगाम जा रहा है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
1: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: नोट कीजिए साहब, रेट्स लेमफाई के वो एक पाउंड के बदले पाकिस्तानी करेंसी में दे रहे हैं 371.05 रुपीस, भारतीय करेंसी में इन इंडियन करेंसी 128.27 रुपीस, बांग्लादेशी करेंसी टकाज 164.26, श्रीलंकन रुपए 442.67, केनियन शिलिंग्स 173.37 एंड मॉरिशन रुपी 63.8 रुपीस फॉर वन पाउंड।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: सोने का भाव, सोने का क्या भाव, जितना मर्जी सो नहीं, गोल्ड का रेट, वेदर गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 104.6 पाउंड्स पर ग्राम।
1: गोल्ड रेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स, poojasweets.com और विजिटर्स एट ईस्ट हैम, हाउंसलो और क्राउली।
3: नीसा नासिर, लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम

0: सात बजे से दस बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।
1: बिग शो में सुनिएगा वो गाना उनकी पसंद का सोने दी तभी तेरी। हमारे खान साहब कहते हैं कि जवानी की याद दिला दी वो गाना सुनवा कर। मोहम्मद खान साहब वो गीत आपके नाम किया, क्या याद करेंगे आप भी। और भाई हमारी अरुणा शाह कहती हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगा गीत, वो मेरे नाम कर दीजिए। अच्छा, सोने की तवितड़ी सबके नाम करता रहो तो मैं तो लुट जाऊंगा ऐसे भाई। सोना सबके नाम, खास आपके नाम कर दिया, आपके भी नाम कर दिया, और किसी को चाहिए सोने की तवितड़ी शाम को मांगना। और अर्जुन जी आपका संदेश मिल गया, थैंक यू वेरी मच भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को धीरे धीरे हम अब समेटने का कार्यक्रम बनाते हैं क्योंकि बाली भाई आ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं बाहर, और वो लाएंगे जन्मदिन मनाने वाले सितारों की, फिल्मी सितारों की जानकारी। मैं ये राजनीति की, मैं भाई राजनीति में जो मैंने जिक्र किया सतपाल महाराज का, कनखल में 1951 में वो जन्मे थे, और मैंने कहा एक बाल योगेश्वर नाम के महात्मा होते थे, अध्यात्म में बड़ा नाम कमाया था, वो इन्हीं के परिवार से थे। तो भाई जो जो जन्मदिन मना रहे हैं हैप्पी बर्थडे।
2: ये है लाइका गोल्ड,
3: क्योंकि सांस भी कभी।
4: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी, एवरीडे एट 9 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected. London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: हैरो, इंतजार खत्म। मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है। सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार। तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद। आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो, स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन। खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना।
8: We're finally going home for the wedding.
9: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
8: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
9: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
8: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
9: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
10: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
11: The Buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
12: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
13: Dubai is the place.
12: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
14: Danu 11, 11. Danu Properties.
15: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
16: Have you noticed the way fans shout at football matches?
17: Oh, wake up!
16: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
18: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
19: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
18: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: कड़क हैं भाई, थोड़ी भड़क है इनको, झगड़ा नहीं चाहते। हम चुपचाप जो है अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, बिछड़ कर भी मैं तुम्हारे करीब होता हूँ, जुदाइयों में तुम्हारे ध्यान रहते हैं। हो वक्त कोई, मुकाबिल कोई, हो बात कोई, मेरे लबों पे तुम्हारे बयान रहते हैं। जो मेरी आंख में रहते हैं रोशनी बनकर, वो बन के दिल में मेरे मेरी जान रहते हैं।
1: राधा बिना है किशन अकेला, राधा बिना है।
0: कहते हैं जाने की बात मत करना, आने की बात करना, कर आएंगे 10 बजे की खबरों के बाद।

माली भाई आएंगे 1 बजे की खबरों के बाद आपका साथ निभाएंगे। रवि शर्मा को अगली मुलाकात तक के लिए अनुमति दीजिए। हैव ए सुपर्ब डे। बाय बाय।

0: थैंक यू रवि शर्मा जी, बड़ा अच्छा प्यारा गाना था, मैं गुनगुनाने लगा और टाइम हो गया। एनीवे वी आर गोइंग टू डू अ ट्रिब्यूट नाउ। इट्स अ ट्रिब्यूट ऑफ अ ग्रेट मैन दैट
1: लाइका गोल्ड। Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. This is Leica Gold Greater London. Now also available in Greater Manchester, Leeds and Bradford.
0: 34th death anniversary of Tarachand Barjatia.

0: आरती और दोस्ती, इन फिल्मों के बाद जिसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज थी विद होलसम म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, फिर तो इतनी सारी मूवीज आई ब्लॉकबस्टर्स फ्रॉम राजश्री प्रोडक्शंस, जीवन मृत्यु जिसमें इंट्रोड्यूस किए गए राखी और धर्मेंद्र, और फिर अमोल पालेकर और जरीना वहाब को चित चोर.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: जैसे मैं कह रहा था, फिल्में आई चित चोर जिसमें अनमोल पारेकर और जरीना वहाब को पहली बार एज अ कपल दिखाया गया. दूसरी फिल्म थी आई थिंक तराना, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती को रंजीता के साथ पेयर अप किया गया था. एंड देन गीत गाता चल, जिसमें दे इंट्रोड्यूस्ड सचिन एंड सरिका, द ब्यूटिफुल कपल दे. एंड ऐसे ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाले, और शारदा को फिल्म सूरज में. दूसरी फिल्में जो थी तपस्या, उपहार, पिया का घर, सौदागर और अखियों के झरोंकों से, जिसका आपने अभी गीत सुना, संग बाई हेमलता एंड शैलेंद्र सिंह. सावन को आने दो, नदिया के पार, दूसरी सारी बहुत सारी फिल्में हैं. बट सुपर डुपर हिट्स वन बाय वन, वन बाय वन. एंड देन ताराचंद जी ही एनविजन्ड द इनहेरेंट पोटेंशियल विद इन हिज ग्रैंडसन सूरज बरजातिया, उनका ग्रैंडसन राजकुमार, उनका बेटा जो है उसका बेटा. तो ग्रैंडसन सूरज बरजातिया में ही सो लॉट ऑफ पोटेंशियल, सो ही कंटिन्यूअसली स्टिम्यूलेटेड द ग्रोथ ऑफ यंग सूरज एंड एनकरेज्ड हिम टू इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट अ फिल्म फॉर द राजश्री बैनर. और नतीजा था फिल्म हम आपके हैं कौन. लेकिन पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया, ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्म. अब देखा जाए तो इतने सालों बाद हिज न्यू मूवी इज कमिंग नाउ, सूरज बरजातिया की ये प्रेम मोल लिया. एंड वो सॉन्ग कल ही रिलीज हुआ, मितुल जी ने बताया मुझे कि कल सॉन्ग रिलीज हुआ. दैट्स सो स्वीट एंड आई थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस. गुड आफ्टरनून बाली, आई हैव रिक्वेस्ट मुकेश जी सॉन्ग फिल्म सोसाइटी अनरिलीज्ड. लेकिन मैं तो ट्रिब्यूट कर रहा हूँ ना ताराचंद बरजातिया का, और नेक्स्ट आवर में भी दूसरा एक ट्रिब्यूट है. बाय द वे इट्स डीडी, आई डिडंट अंडरस्टैंड. ओ या डीडी, डीडीडी दिनेश दीनू दत्ता. अगर मौका मिला थर्ड आवर में हम करेंगे गाना. थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस. आगे बढ़ते हैं.
1: ये है लाइका गोल्ड.
0: And I have news for you. And the news is... Final few days to go to the Diwali story, brought to you by Sanatan Events and exclusive radio partner Laika Radio Network. It takes place at OVO Wembley Arena on Sunday, 27th September. Doors open at 4:30 p.m. with a student pre-show from 5 p.m. to 5:45 p.m. and the main performance from 6:15 p.m. to 9:30 p.m. Tickets from www.diwalistory.com.
1: Wake up to Kajalon breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Laika Gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: You're listening to Bali Brahmbhatt in Gold Afternoons. Gold Afternoons, proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
4: 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
5: The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danube Properties London office today on 02 03 963.

क्या गाया किशोर दा ने, ये खूबसूरत गाना फ्रॉम द फैमिली ओरिएंटेड फिल्म पिया का घर। फैमिली ओरिएंटेड की बात करते हुए मुझे काजल के गणपति पूजा के बारे में याद आया, मैं सैटरडे गया था वहाँ, एंड द म्यूजिक बाय अभिषेक एंड ऑल द वंडरफुल म्यूजिशियंस देयर।

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627
3: sonajewelers.co.uk स्पेशल ऑफर हॉलिडे ऑफ अ लाइफटाइम विद अमेजिंग डिस्काउंट 14 डेज कैनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027 बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट 400 ऑफ ऑल लूज द डिस्काउंट कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 0208 951 0111
4: across London. This is Bally Brambat on Like a Gold.

And this was the first film of Rajshri Productions Private Limited. उसमें इन्होंने 1962 में आरती फिल्म बनाई थी।

संगीत था रोशन का और लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी। पहली फिल्म ऑफ ताराचंद बरजातियाज राजश्री प्रोडक्शन प्राइवेट।

0: मेरा कंप्यूटर भर गया विद ऑल योर मैसेजेस. एंड रानी जी थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग सच अ ब्यूटिफुल सच ब्यूटिफुल पंजाबी सॉन्ग्स. एंड And we got Kirti enjoying your program as always. Ash Sharma says, thank you, Bali Bhai, for a wonderful start to the life of Malikae Tarannum. So, aage sunte jaiyega, maza aayega. Kishore Pandya ji, kya baat hai, zordar. Thank you very much. And Dee Dee, we shall catch up later on. And we got Salma ji from Maidstone. Vijay Gudori, Jyoti and Girish Shah, and Jaidev Soni is very excited about all the songs that we are playing here. Farida Ghulam Ali, of course, you would be like so elated with all the songs. And Intashab Ji, you're back from Pakistan. Welcome back. And it's so nice to get your messages. And salams and namaste to you. And enjoy this hour of Malikae Tarannum, Nightingale of the East, Queen of Hearts, Daughter of the Nation, the Nightingale of Punjab, Madam Noor Jahan. She was born on 21st September 1926 in Kasur. Kasur was in Punjab, is in Punjab, ek Pakistani shahar, jahan kai notable people, jane mane log wahan janme the. अब कसूर इज एक्चुअली साउथ सिटी, इट्स इन द साउथ ऑफ लाहौर. एंड द नोटेबल पीपल दैट मैंने जब नाम पढ़े तो मैं बड़ा खुश हुआ. इट वॉज द बेरियल प्लेस ऑफ सूफी पोएट बुल्ले शाह. वाह, नामचीन लोगों का इस गांव के साथ नाता है. कसूर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बड़े गुलाम अली खां, क्लासिकल वोकलिस्ट्स. एंड बरकत अली खां, उनका भी जन्म इस जगह पे हुआ, कसूर में. यूसुफ खान, देयर इज अ पॉपुलर फिल्म जिद्दी, मतलब के एक एक्टर जिन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्मों में काम किया, यूसुफ खान. एंड फतेह मोहम्मद सियाल, first Ahmadi missionary who was sent from India to UK. Now, Noor Jahan Madam Ji was born as Allah Rakhi Vasai, unka asli naam, and she passed away on 23rd December 2000 in Karachi. Her father, Imdal Ali, and mother, Fateh Bibi, they had 8 children and Noor Jahan was one of them. Inke husbands dekhe, spouses dekhe to Shaukat Hussain Rizvi, jinke saath inki shaadi hui thi 1941 mein, and divorced in 1953. 1947 mein dono Pakistan wapas chale gaye the. Ijaz Durrani, 9 years younger than her, 1959 में जब डिवोर्स हुआ, 1953 में 6 साल के बाद इजाज दुरानी के साथ शादी हुई 1959 में, एंड गॉट डिवोर्स्ड इन 1971. एंड शी गॉट 3 चिल्ड्रन फ्रॉम ईच मैरिज. शौकत हुसैन रिजवी के साथ 3 बच्चे, इजाज दुरानी के साथ 3 बच्चे. एंड देन शी हैड अ फ्यू वंडरफुल रिलेशनशिप्स विद अ क्रिकेटर नजर मोहम्मद एंड एक्टर यूसुफ खान, जिनका नाम मैंने आपको बताया, हु वॉज बोर्न इन कसूर. नाउ शी हैज द रिकॉर्ड ऑफ हाइएस्ट नंबर ऑफ फिल्म सॉन्ग्स इन पाकिस्तानी सिनेमा, जॉइंटली हेल्ड विद अहमद रशदी. अहमद रशदी वॉज अ प्लेबैक सिंगर फ्रॉम 1951 टू 1983, एक्टिव एंड रिकॉर्डेड द ऑफिशियल नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान. Approximately 5,000 songs for 583 released films. Career dekha jaye to 52 films mein inhone acting ki thi Noor Jahan Madam ne, 17 as a child artist. Aur jahan pe acting ki thi Yamla Jatt, विद प्राण. प्राण जी के साथ जब एक्टिंग की थी, शी वॉज अ लिटिल गर्ल एंड ऑब्वियसली शी हैड टू बी स्टैंडिंग ऑन कपल ऑफ ब्रिक्स टू मैच द हाइट विद प्राण साहब. जीनत फिल्म, अनमोल घड़ी, जुगनू, मिर्जा साहिबान वॉज विद त्रिलोक कपूर, दैट्स अ ब्रदर ऑफ पृथ्वीराज कपूर. फिर पाकिस्तान चले गए, वहाँ पे चानवे, दुपट्टा, इंतजार, अनारकली, कोयल, ऑल टुगेदर 52 फिल्म्स एंड 17 एज चाइल्ड आर्टिस्ट लाइक आई सेड. नाउ थिएटर ओनर दीवान सरदारी, ही टुक हर विद फैमिली टू कैलकटा इन होप्स ऑफ डिवेलपिंग मूवी करियर्स फॉर नूर, दैट्स अल्लाह वसई, एंड ओल्डर सिस्टर्स आइदन बाई एंड हैदर बंदी, इनकी तो बहनें. अब इनकी करियर ऐसे शुरू हुई, शी स्टार्टेड सिंगिंग एट द एज ऑफ 6 1931 में ट्रेडिशनल फोक एंड पॉपुलर थिएटर में. सो हर फादर, ब्लेस हिम, ही सेंट हर फॉर ट्रेनिंग टू उस्ताद गुलाम मोहम्मद एंड कज्जन बाई. कज्जन बाई, शी वॉज जहान आरा कज्जन, स्यूडोनिम अदा उनको कहते थे फॉर पोएट्री, द नाइटिंगेल ऑफ बंगाल. ओ वाओ, शी वॉज द लार्क ऑफ हिंदी सिनेमा एंड ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर एंड अ फैशन आइकॉन. ब्यूटिफुल, शी वॉज सो ब्यूटिफुल लुकिंग एंड अ ट्रेंड सेटर. सो नेचुरली कज्जन बाई जो इनको ट्रेन कर रही थी, उनकी तरफ से इन्होंने क्लासिकल सिंगिंग भी सीखा और हाउ टू लुक लाइक अ फैशन आइकॉन. एंड एट द एज ऑफ 11, नूर जहां स्टार्टेड हर ट्रेनिंग इन कैलकटा, लर्निंग ट्रेडिशंस ऑफ पटियाला घराना, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ ठुमरी, द्रोपद एंड ख्याल. शी ऑलवेज वॉन्टेड टू डू एक्टिंग एंड प्ले बैक सिंगिंग. सो आफ्टर हर वोकेशनल ट्रेनिंग, शी परस्यूड हर कैरियर सिंगिंग अलोंग साइड हर सिस्टर इन लाहौर. 1938 में शी रिटर्न टू लाहौर एट द एज ऑफ 12. 1939 में गुलाम हैदर कंपोज सॉन्ग्स फॉर नूर जहां, लेड टू पॉपुलैरिटी देयर. 1942 में 16 साल की उम्र में शी प्लेड मेन लीड ऑपोजिट प्राण इन खानदान, मेजर सक्सेस, हर फर्स्ट रोल एज एन एडल्ट. देन शी शिफ्टेड टू बॉम्बे विद director Sayed Shokat Hussain Rizvi, who she later on married till 1953, jab umr thi 27 saal ki, to become one of the biggest film actresses of the Indian film industry. Early film kaun si thi, Badi Ma. Then she shifted to Pakistan 1947 mein with her husband, that Sayed Shokat Hussain Rizvi. Both directed Chanve. Uska gana maine rakha hua hai aapke liye. Together she became first female film director of Pakistani films, Chanve film mein. And then she was heroine and playback singer in Chanve. And 1952 mein Dupatta was even bigger hit than Chanve. Main toh bahut kuch bata sakta hoon. But singing for her was not effortless, but an emotionally and physically draining exercise. She used to put her heart and soul into her singing. Yes, the great lady, born as Allah Rakhi Vasai, Malika-e-Tarannum, Madam Noor Jahan, actor, singer, composer, director of the first Pakistani film director. I can immediately tell you she was active for 70 years from 1930 to 2000. She got 15 Nigar Awards. What a lady, what a lady, my favorite. Hum kuch gaane sunate hain aapko. Lutf uthaiyega aur Madam Noor Jahan ko yaad kijiyega.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
1: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान. फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410. दैट्स 0208574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected. Cow's
5: choice, cow's choice. 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 0734-520-666. Cow's choice, pure ghee, har chamach
1: mein, shudh desi swad. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
6: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
7: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर 14 डेज टू जापान एंड साउथ कोरिया फॉर चेरी ब्लॉसम्स इन मार्च एंड अप्रैल 2027. बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट अप टू 300 ऑफ और लूज द डिस्काउंट आफ्टर. कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 0208-951-0111.
2: द साइकिल ऑफ लव. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
3: I left behind everything I knew.
2: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
3: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
2: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
6: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: सबसे निराला
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
3: The Cycle of Love from executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
4: I left behind everything I knew.
3: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
4: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
3: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
5: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
6: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
5: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
7: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk across London. This is Bally Brambath on Leica Gold.

0: गुलाम हैदर ने ये कंपोज किया फिल्म खानदान 1942 की फिल्म एंड डी एन मधोक ने लिखा. वी आर एंजॉइंग नूरजहां सॉन्ग्स.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: इतनी खूबसूरत आवाज को डिस्टर्ब करना पाप है। कैदी फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म, रशीद अत्र का संगीत और फैज अहमद फैज की लिरिक्स। एंड दिस इज वन ऑफ योर फेवरेट्स आई नो, फरीदा गुलाम अली जी, आपकी नजर।
1: मेरे बचपन के

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
0: डिस्कवर द मैजिक ऑफ स्विट Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
2: मीनार ज्वेलर्स. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
3: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
1: TravelHubWorld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danu Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203-773-6333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स your travel mantra.
3: Harrow, famous spice village, is now open in Harrow. Sizzling mixed grills, signature masala fish, rich, delicious karais and fresh naan straight from the tandoor, and with one of the biggest vegetarian menus prepared in a separate vegetarian kitchen. So bring your family, bring your friends and taste the award-winning flavour of Spice Village. Find us at 1 to 4 Dominion Parade, Station Road, Harrow. Spice Village Harrow, now open. Your new place to eat, meet and celebrate.
6: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 0192322727274. बुक योर टेबल टुडे.
8: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी. रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी. कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा. वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 2, साउथ राइस्लिप, HA40JS. रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों मा जरूर जोड़ाओ. वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-2287509.
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
11: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
12: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
13: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Visit heraldplastic.com.
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
2: गुरु गुरु,
4: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
2: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
4: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
5: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
3: शीघ्र शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
6: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11,
9: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
11: Danu 11, 11. Danu Properties.
12: हमारी रक्षक है वो।
13: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
14: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
13: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
15: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
16: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
17: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
16: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
17: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
16: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
17: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
18: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
19: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK. 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
1: Bali Brahmbhat on Gold Afternoons.
4: Like a gold.
0: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: गीत गाता चल। दिस वॉज अ ताराचंद बरजातिया फिल्म 1975 की। नेक्स्ट एन इवनिंग इन पेरिस, आफ्टर विच काजल इज गोना कम टू एंटरटेन यू टू द फुलेस्ट।
1: लाइक अ रेडियो नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस ग्रेटर लंदन।
0: Enjoy drive time with Kajal. She's gonna put all your favorite songs, and she's smiling away because she had a successful, lovely Ganesh Pujan on the weekend. Thank you, Kajal.
2: Thank you.
0: And well done. Bali Brambat ka namaskar.

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: है
1: लाइका गोल्ड
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
0: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
0: विजिट travelhubworld.com
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24-hour line.

0: This is Leica Gold Greater London. Now also available in Greater Manchester, Leeds and Bradford.
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और लीजिए भाई, बहुत सारे और जवाब भी आए और यकीन करें कि सिर्फ एक सही जवाब मुझ तक अभी तक पहुंचाया गया है और वो है संध्या भवसर जी, हमारी क्वीन, हमारी प्रिंसेस, रानी ऑफ द आवर। संध्या जी, वेल डन। ऑनेस्टली सब धोखा खा रहे। मैं आज सोच रही थी घर से निकलते हुए भी रास्ते में, मैंने सोचा बहुत दिनों से मैंने अपने सुनने वालों को चक्कर नहीं दिया, तो आज थोड़ा सा चक्कर देना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरे चक्कर में आ गए आप, यानी मेरे फैलाए हुए जाल में मछलियां मछले सभी फंस रहे हैं। अवतारा सी जी, जीशान जी, दीनी जी, ताहिर जी, चौधरी फरीद अहमद जी, रुखसाना अफजल जी, विजय गुडोरी जी, मीनाक्षी जी, अंजू जी, सबका सेम ही जवाब। और वैसे जिस तरह मैं मिसलीड कर रही हूँ आपको, उसके हिसाब से आप सही बता रहे, लेकिन ये जवाब नहीं है। जवाब वो सही है जो हमें भिजवाया है संध्या भावसर जी आपने, वेल डन। लीजिए एक पैगाम आपके साथ शेयर करें, उसके बाद अगला गीत, और फिर जो लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं अब उनको तो मैं कहीं नहीं कहूँगी कि ट्राई करें, लेकिन अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनल फ्यू डेज टू गो टू द दिवाली स्टोरी जो आप तक लेकर आए हैं सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइक रेडियो नेटवर्क। इट टेक्स प्लेस एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन संडे 27 सितंबर। डोर्स ओपन एट 4:30 PM विद अ स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन परफॉर्मेंस फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। टिकट्स अवेलेबल एट diwalistory.com। जल्दी से बंदोबस्त कर लीजिए।
0: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: London at Breakfast and Drive. This is Anissa Nesser with The Big Show.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु,
6: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
4: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
8: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
9: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
10: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
11: We're finally going home for the wedding.
12: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
11: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
12: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
11: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
12: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
11: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
13: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: लाइका गोल्ड ऑफिशियली लंदन्स नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन।

0: और अब तक मेरे सुनने वालों की दिल की बात जो जुबान तक आई है, तहरीर की सूरत में मुझ तक पहुंची है, वो कुछ ठीक नहीं लगी मुझको। जाने सारों को तेरे कब ये खबर थी कि तुझे दिल से चाहेंगे, निभाएंगे, पशेमा होंगे। लेकिन पशेमा होने की ज़रूरत ही नहीं, आप कोशिशें कर रहे हैं, अब कामयाब नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं। वो एक बड़ा प्यारा शेर है कि हम दोनों ही नाकाम रहे मोहब्बत में, वो मुझको चाह ना सका, मैं उसे भुला ना सका। वही वाली सिचुएशन है। श्वेता जी, गीता हर्षद जोशी जी, इरफान जी, अजिंक्या जी, मनजीत संगर जी, रेणुका जी, उमर जी दुबई से, तारिक राहिल जी, आबिद जी, प्रुथा भवे जी, नौशीन खान जी, फायजा खान जी, अरुणा जी, अमिता जी, अब तक तो रानियों की तरह यूं सज धज के सिर्फ और सिर्फ संध्या भावसर जी बैठी हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 370.3 Pakistani rupees, 128 Indian rupees, 86.6 Afghan afghani, 163.9 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
1: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
0: और मैं हमेशा कहती हूँ कि गीतों में कुछ भी कॉमन हो सकता है। आप सब के सब सिर्फ और सिर्फ वर्ड ढूंढने में लगे हुए।
2: Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury, and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104.62 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow, or Crowley.
0: और भी वो जो दुनिया में कहते हैं ना कि अच्छे लोग कम हैं, तो वो बिल्कुल गलत बात है। मेरे ख्याल में दुनिया में ज़्यादातर अच्छे लोग ही हैं। एमरशम में लास्ट बल्कि दिस वीकेंड मेरी मुलाकात हुई बहुत ही प्यारी प्यारी लेडीज से, और व्हाट अ लवली क्राउड, ईच एंड एवरीवन सो लविंग, सो वॉर्म, माशाल्लाह से। थैंक यू सो वेरी मच। ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रिफत कुरैशी जी का, डॉक्टर जरका जी का। रिफत जी कहती हैं, बहुत सालों से मेरा एक अरमान था कि हमारे इस एरिया में आप आकर जो है वो होस्ट करें, और मुझे जब भी उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो कोई ना कोई मसरूफियत ऐसी रही कि हमारा मिलाप नहीं हो सका, और अब जो हुआ तो वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। रिफत कुरैशी जी, तहे दिल से मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ, एंड ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन आई मेट देयर हमेशा याद रहेंगे, बहुत प्यारे लोग, ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारी हेलो हाय आप सभी के लिए। हाँ जी, क्या कॉमन है गीतों में?
2: Biggest Indian and Pakistani classics with Anisa Nasir.

0: हम दोनों।
1: और इस दिल लगी को दिल की लगी मत बना लीजिएगा। रीटा जी, सरोज जोशी जी, जगजीत संगर जी, दिनेश जी, पूनी जी, तोची जी, सईदा जी, आपके जवाब बात भी गलत हैं। संध्या भावसर जी के बाद बहुत बाद मनु जी आपका जवाब सही। उल्लास जी, निलेश जी, गुरसरनजीत जी, रजनीश जी और अंजुम जी, वेल डन। आज किशोरदा कॉमन थे गीतों में, भाई आप वर्ड्स के पीछे लगे रहे और आपने ये नहीं देखा कि सब बदलते रहे लेकिन किशोरदा वहीं जमे रहे, टिके रहे, तो वो कॉमन होंगे ना। लेकिन मैंने भी थोड़ी चालाकी की और आपको अल्फाज में उलझाने की कोशिश की, ऐसे गीत शामिल किए जिसमें हुस्न की तारीफ थी। बस यही तो बात है ना, यही तो, इस चक्कर में नहीं आना होता, चक्कर के बाहर रहना होता, लेकिन एटलीस्ट यू ट्राइड। थैंक यू वेरी मच। किशोरदा की आवाज़ में गीत सुनते हुए चलते हैं न्यूज़ की जानेब। गुड इवनिंग।

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Kamal, Asha Gupta ji, wo apne unke bare mein tafseel se bata rahi hain ki paan khaye se yahan maro. Aap keh rahi hain mazahiya gana hai. वैसे है, थोड़ा सा है. आपके नाम कर दूं? बेहद शुक्रिया मैसेज भिजवाने के लिए. और अब एक मैसेज मैं भी आप तक पहुंचा दूं.
0: This is like a gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: Southall Travel is known for its competitive holiday deals for Dubai. Contact कीजिएगा Southall Travel को आज ही on 0085748410 पर. Southall Travel is at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: और लीजिए एक दफ़ा फिर से मैं दोहरा देती हूँ अल्फाज को. बेगाना सा दीवाना सा जब शाम ढले. और मुझे पता था सईदा जी, मुझे पता था अगर आप नहीं तो कोई ना कोई ये ज़रूर भिजवाएगा. फरमाती हैं गाना है जब शाम ढले, और फिर शर्मा के मुंह भी छुपा रही हैं. पता है कि गलत जवाब दिया, लेकिन सच्ची में सईदा जी, आई लव यू फॉर दैट. आप हमेशा ट्राई करते हो, आप कहते हो कि चाहे गलत ही हो जाए मैंने भिजवाना ज़रूर है. दैट्स द स्पिरिट एक्चुअली.
0: This is Anisa Nasir on Like a Gold.

0: है लाइका गोल्ड। अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: लीजिए आपको बता दें लाइका एक्स्ट्रा न्यू पॉडकास्ट, जी हाँ, उनकी एपिसोड 34 जिसमें दीप राजा जी विल बी टॉकिंग टू संगीता पांडे। दे एक्सप्लोर मॉडर्न हरेसमेंट एट वर्क, फैमिली एंड व्हेन वन शुड स्पीक अप। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो है वो अवेलेबल है, आप हर एपिसोड देख सकते हैं ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा, Anissa Nasir, live across Greater London with The Big Show.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 02087828833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
6: Oh, terrible weather.
5: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
7: See ya, good luck with the interview.
6: Thank you, bye.
5: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
8: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Laika Radio Network.
9: हमारी रक्षक है वो।
10: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
11: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है?
10: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया, इन सिनेमास फ्राइडे 25th September। फॉर UK रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
12: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
14: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chicky Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
15: Add desi tadka to your routine with Jaimin. जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
14: जैमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: लाइका रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रागासन। Laika Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at laikaradio.com and the Laika Radio mobile app. Feel Good Classics with Anissa Nasir.

0: रंग निकहत निखार नूर जहां, रंग निकहत निखार नूर जहां, पुरकशिश पुरवकार नूर जहां, अंदली बेचमन सदाए वतन, खूबिये सद हजार नूर जहां, वन नोली मलिगा तरन्नो, एक ही थी, एक ही हैं और एक ही रहेंगी। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर मुझे जहां जहां मौका मिलेगा मैं उनके गाए हुए गीत आज आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे सोज में तबस्सुम, मेरी आह में तरन्नुम, और इसका सही बयान, इस लफाजी का, इनमें फीलिंग भरने का, वो सिर्फ और सिर्फ मैडम ही कर सकती थी।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound आज आपको दिला सकता है 128 Indian rupees, 370.6 और Pakistani rupees, 86.6 Afghan Afghani, 164 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104.63 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
3: Punjabi Torka with Anissa.

में एक नया अंदाज, हर नगमे में एक अजीब सी नगमगी जो बहुत कम लोगों के आवाज में मिली या मिला करती है। जिंदगी के हर रूप को अपनी आवाज के जरिए हमारे कानों तक पहुंचाया। बेशुमार गाया लेकिन फिर भी लगता है कि बहुत कम गाया। गीतों को गजलों को अमर बना देने वाली फैज जी की नज्म, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, उन्होंने ओन की। फैज जी ने कह दिया खुद ही कि इस नज्म को मुझसे कोई मंसूब

0: मलिका तरन्नुम नूरजहां जी को बुलवाया गया, उनको परफॉर्म करना था, गाना था, और उन्हें ख़ास तौर पर कहा गया कि फैज़ जी का कलाम तो आप नहीं गाएंगी। उन्होंने कहा अगर मैं फैज़ जी का कलाम नहीं गाऊंगी तो मुझे गाना ही नहीं है। एंड गेस व्हाट, उन्होंने ना सिर्फ गाया बल्कि फैज़ जी का कलाम भी लहरा लहरा कर गाया उनकी इस जिद के आगे। ऑर्गेनाइजर्स को घुटने टेकने पड़े। ये थी वो बुलंद किरदार और मेहनती, बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने और ये उनकी मेहनतों का ही सिला है कि आज उनके 100th बर्थडे अगर वो इस दुनिया में होती तो मना रही होती। ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले कई सौ सालों तक उनको याद किया जाएगा, इसी तरह से चाहा जाएगा, इसी तरह से सराहा जाएगा इंशाल्लाह।
1: This is Anisa Nasir with the Big Show. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Harrow, famous Spice Village is now open in Harrow. Sizzling mixed grills, signature masala fish, rich, delicious karais and fresh naan straight from the tandoor. And with one of the biggest vegetarian menus prepared in a separate vegetarian kitchen. So bring your family, bring your friends and taste the award-winning flavor of Spice Village. Find us at 1-4 Dominion Parade, Station Road, Harrow. Spice Village Harrow, now open. Your new place to eat, meet and celebrate.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
4: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: फ्रॉम साउथ ऑफ ब्रॉडवे टू द London Tube, UK. The big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02030773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स Your travel mantra.
6: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
7: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Like a radio और like a gold, आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@lykaradio.com।
1: Anisa Nasir with the Big Show, weeknights from 7 PM.

क्या बात है इस गीत की। ये था हमारा आज का उल्टा पुल्टा, जिसे सबसे पहले पूछा बूझा एजाज जी आपने, यू आर द राजा ऑफ द आवर, अजिंक्या जी, उल्लास जी, गीता हर्षद जोशी जी, आपके जवाब सही थे, सईदा जी और संध्या भावसर जी ने कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, सो दैट्स फाइन, एटलीस्ट आपने कोशिश की। अब जब मलका तरन्नुम नूरजहां जी की बात आती है तो समझ में नहीं आता कि क्या सुनूं, नगमा, गीत, पंजाबी, उर्दू, सराइकी, क्या सुनना चाहेंगे आप। चलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी पसंद को जहन में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करूं जो आप सबको पसंद आए। और आप मुझे बता रहे हैं कि बाली जी ने आज बहुत बहुत बहुत प्यारा ट्रिब्यूट जो है वो मलिका तरन्नुम नूरजहां जी को दिया, तो आपकी तरफ से आपने यकीनन ख़ुद भी उन्हें बहुत प्यार और ब्लेसिंग्स भेजे होंगे, लेकिन मैं भी आपका प्यार उन तक ज़रूर पहुंचा दूंगी। बाली जी कमाल करते हैं हमेशा ही, तो आज कैसे नहीं करते। थैंक यू सो वेरी मच बाली जी। और मैं चंद नगमात मलिका तरन्नुम जी के आप तक पहुँचाऊँगी, सुनते रहिएगा।

0: कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में आपने सुना ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत और उनके गाए हुए गीतों का बेशुमार खजाना जो है हमारे पास मौजूद है लाइव परफॉर्म करने के लिए भी वो तशरीफ़ ला रही हैं दोस्तों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर जाएंगे पहुंचेंगे उनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखने के लिए। लीजिए दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे मलिक ए तरन्नुम जी के गाए हुए बहुत सारे गीत। वैसे थोड़ी सी एक बात मैं छोटी सी कहना चाहिए आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सादत हसन मंटू जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है नूरे जहाँ सुरूरे जहाँ, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्म के वाकयात जो हैं वो बड़े तफसील से कलम बंद किए हैं। तो अगर कभी आपको मौका मिले वो किताब पढ़ने का तो ज़रूर पढ़िएगा। एक छोटी सी बात उसमें ये की है, रफ़ीक गज़नवी साहब बहुत बड़े फ़ैन थे मलिक ए तरन्नुम नूरजहाँ जी के। एक्चुअली सादत हसन मंटो जी से नूरजहाँ का तारुफ उन्होंने ही करवाया था। और जानते हैं क्या कह के करवाया था, मंटो ये नूर है, नूरे जहाँ है, सुरूरे जहाँ है। खुदा की कसम ऐसी आवाज़ पाई है कि अगर जन्नत की खुशलहान से खुशलहान हूर भी इसकी आवाज़ सुन ले तो इसे सिंदूर खिलाने के लिए जमीन पे उतर आए।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Anda tere le reshmi rumal te utte tera na kadya ve main badhiya hi chawana निक्के होंदियां दा प्यार 1969 की फिल्म और फिल्म में ये गीत पिक्चराइज हुआ था बहुत ही प्यारी बहुत ही अपने वक्त की जानी मानी नगमाची पर. लीजिए अब एक मैसेज आप सभी के नाम.
3: ये है लाइका गोल्ड.
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.
2: बिल्कुल बेशक करते हैं और आपका दिल बहलाते हैं. और एक पैगाम और है मेरे पास. जैसे कि अभी अभी मैंने कविता कृष्णमूर्ति जी का गीत सुनवाया तो आपको बताया कि द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म करेंगी लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1 नवंबर. ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स and it's as a Diwali special aapke liye tohfa hai. Tickets from the venue box office, exclusive radio partners Laika Radio Network.
0: This is Anisa Nasir with a big show.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट TravelHubWorld.com.
7: Two businesses,
8: same town,
7: same service.
8: One appears on page one of Google,
7: the other doesn't.
8: Guess which one gets the customer?
7: The truth is brutal.
8: The first page of Google gets the business.
7: Everyone else gets what's left.
8: So here's the real question.
7: When your customers search for what you sell, do they find you?
8: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
10: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
9: ये तो बताओ कोई पता चला?
10: गुरु गुरु
11: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
9: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
12: शीघ्र शीघ्र
11: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November. टू बुक कॉल 0208-514-5400. Online at Eventbrite.
7: Exclusive radio partner Laika Radio Network.
13: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
14: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
13: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
14: Call us today on 0208-706-0915. That's 0208-706-0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
13: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
15: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Non-stop classics. Classics. Like a Gold.
6: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: One British pound aaj aapko dila sakta hai 128 Indian rupees, 86.6 Afghan Afghani, 370.5 Pakistani rupees, 164 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: The gold is currently trading at £104.43 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: बातें बहुत सारी हैं शेयर करने को, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके गाए हुए गीत जो है वो आपके कानों तक पहुंचाऊं। लेकिन एक बात का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूंगी कि 1945 में बनने वाली फिल्म बड़ी माँ में, जिसमें मलिका तरन्नुम नूर जहाँ जी ने मेन किरदार अदा किया, उस फिल्म में लता जी और आशा जी बचपने के किरदार में थी। और 1945 में नूरजहां जी ने पहली बार जोहरा बाई अम्बाले वाली और कल्याण के हमरा कवाली गाई, और जनूबी एशिया में पहली बार ख्वातीन ने कवाली गाई थी। कवाली आपको याद है? अफसोस के मैं नहीं सुनवा पाऊंगी, लेकिन कवाली के बोल थे, आहें भरी न शिकवे किए। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत उनका गाया हुआ, जो कि हसबे हाल भी है, गाएगी दुनिया गीत मेरे, आज तक गा रही है और गाती रहेगी।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: From Lollywood with love, with Anissa.

0: और बिल्कुल सही कहा था, फरमाया था लिखने वाले लिरिसिस्ट जनाब तनवीर नकवी जी ने. रशीद अत्री जी का म्यूजिक, मौसीकार फिल्म 1962 की फिल्म, सबिया खानम जी पर पिक्चराइज ये गीत. और वाकई विजय जी आपने सही कहा, इससे ज़्यादा मुनासिब कोई गीत नहीं हो सकता उनके लिए कि गाएगी दुनिया गीत उनके. बेहद शुक्रिया आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए. मैं सारे शामिल नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अब आखिरी ये जो तीन गीत हैं, मैं चाहती हूँ कि बगैर किसी इंटरप्शन के आप इन्हें इंजॉय कीजिए. बशर्ते ज़िंदगी में कल मिलती हूँ. शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवाले.
1: Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 PM. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
1: Southall Travel, at all protected.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके. जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थॉल्ट. एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम. टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क.
5: हमारी रक्षक है वो.
6: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
7: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
6: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया, इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
8: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी पार्ट ऑफ इट. क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ. Danny Properties Dubai has something for everyone.
9: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place.
9: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.

0: Laika Gold. This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
1: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
0: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: फंक्शन रखा हुआ है।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
3: डेजर्ट सफारी,
4: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208-8839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: विंटर्स कमिंग एंड मेरा बॉयलर pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
8: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
9: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक न घूमे, आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: Like a gold. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
1: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
0: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
1: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
0: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel, Atoll Protected.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
6: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203 773 633 नाउ. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: Dubai is an opportunity to now be

0: प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई पड़क सके ना बच।
1: क्यों रे चले, झूठ कहा?
2: नहीं गुरुजी, सच।
0: थैंक यू वेरी मच। मन को

0: अरे जिया राम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही।